एक न चेतस मूड मनाओ, हर बिसरत तेरे गुण गलया रहाओ। नाहु जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरणाओ, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख देहोरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया।

कहु सिमट भयो शंकर काठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंभव, आद जुगाद स्वरूप सुयंभव। अब इच्छा मेरी तुम करो, सिख बार असिख संग हरो, दोट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता।

के तू संकट सबटारे। जो कल को एक बार त्याए है ताके काल निकट न है। अच्छा हुईता ही सब काला दुष्ट अरह टरंत काला। कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो ताके ताप तनक मैं हर हो।

मूर्तपूर्ण पुरुषार कालहीन कला संयुक्त काल पुरुख का देश धर्म धाम सो भरम रहत भूत लख भेस अंग रंग नरंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दाय काम आप रूप अमीक अनुसत एक पुरुख अवधूत गर्भ गंजन सरपंदन याद रूप अछूत है अंगहीन भंगनाथ में पुरख पारु सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पारु सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन भेख सर्व शास्त्र न जानी जय रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जा कह नित भाग नितो कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवई बहुत चित्त गुण गण उदार महिमा पर आसन भंग पनांगन भाव प्रकाश निस्तिन रस राजन बाहु साहु साहु राजन राजु पारन पारन देवन देव महान इंद्र इंद्र बालन बाल रंग कालन कालन कालन भूत अंग भंग गत मित पार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपहने काम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलसह कर्म आदर्शा धर्म सर्वा प्रणाडयांडन बाड्यंग चाचरी छंद तप्रसाद गोबिंदे मकंदे उदारी अपारी हरियंग करियंग नामे अकामे भुजंग प्रयात छंदे चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र प्रती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पितर न कर्म न काय जन्म अजाय न चित्र न मित्राय परय पवित्राय प्रतिशा अदिशा अदृशा अकृष्टाय भगवती छंद त्व प्रसाद काते के अचज देसा के अपिज पिसा के अगंत कर्म के अपंज परम के अपिज लोक के अदित शोक के अवधूत वर्ण के विभूत करण के राजन परम के त्रमंग तुझ के शोक वर्ण के सर्वा भरण के जगतंग कृतिय के छत्रंग छत्रिय के ब्रह्मंग स्वरूप के अर्पह अनुप के आद अदेव के अप अपेव्य के चतरंग विहीन के एक अधीन के रोजी रजा कर हिमर हक पाक ब्याबे के गैबल गैबे के अफल गुनाह के साहन साह के कारण कुणिंद के रोजी देहंद है के राज करी मैं के कर्म करी मैं के सर्वंग कली हैं के सर्वंग दली हैं के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने के सर्वत्र दिशाए के सर्वत्र पिसाए के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजाए के सर्वत्र दीनाए के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पिसा के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पिसा के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माना के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कली मैं के परमंग अफी मैं के आकुल अलाम के साहब कला मैं के उस नल वजू है तमा मरण जू हमेशा सलाम मैं सली खत्म दाम है गरीबर सकस्त है गरीबर प्रस्त है बिलांदर मकाना जी मेरा जमाना है तमी जुल तमा मैं रुजवल निधान है हरिफुर जी मैं जाग जकीना अनेकुल तंग है भेदया भंग है जी जुल नवाज गरिमुर कराज है अजी जुल नवाज गरिमुर कराज निरुक्त स्वरूप पैतृ मुक्त भूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुधा हंसदैव स्वरूप है भेदी रूप है समस्त उपराज सदस साज है समस्त सदैव हंसदैव लुकाम निर्बाध स्वरूप है गाद हनुप है ओ अंग आद रूप है अनाथ रूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्ग त्रिबादी अगंजे अगादे सुभंग सुरभागे सुसरमा अरागे त्रिभुगत स्वरूप है छेज हंसूत है कि नरकुम प्रणास है प्रचिल प्रवास है निरुक्त प्रभा सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनुप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनुप है चाचरी छंद है अपंग है अनंग है अपेख है लिख है पर परम करम अनाद जुगा दया जय है बह है भूत्या तूत्या नास्या दास्या तंद है बंद है।
अभक्त बरक्त नाश प्रकाश चिंत सुनत अलिख्या दिख्या लिख्या भिख्या ढा है गा है सब है गम है नील है नाद अनित है सुनित है जात है जाद है चरपट छंद प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंताउ सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाताउ सर्वं हर्ता सर्वं कर्ताउ सर्वं प्राणु सर्वं त्राणु सर्वं कर्म सर्वं धर्म सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता ऋषाबल छंद प्रसाद नमो नरकनाशी सदैवं स्वप्न नमो नरकनाशी सदैवं प्रकाशी अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथी अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात न साकं त्रिका मित्तो मी के सदैवं प्रवह अजाय अजाहे भगवती छंद प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है मैं सुरसला मैं समसल कुला मैं के साहब दिमागे के हुसन तलागे के कामन करीम मैं के राज करीम मैं के रोजी देहंद है के राज कर हिंद है करी मुल्क माले कुशल जमाल है गरी मुल्क राज है गरीब नवाज है हरी फल सकन है रासल पिकन है कलंक प्रणास है समस्त निवास है गंजल ग्रीन मर जा करही मैं समस्त जबाहिक साह विक्रह के नरकों प्रणास है बहस निवास है के सर्वल गबन है मिश्र रवन है तमा मुलत जी मैं समस्त अजीज है पारु परमी सह समस्त अजी सह देसल अलीक है मैं सल भेख है जमिल जमाह मिकल माह करी मुल्क माले के जुर जमाले के अचलंग प्रकाश है कि मित्त बास है के अजब स्वरूप है कि मित्तो विभूत है कि मित्तो उपसा है के आत्म प्रभ है के अचलंग अनंग है कि मित्तो भंग है इमद भार छंद प्रसाद मोन मन प्रणाम गुण गण बदाम अर बर अगंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मन मन सलाम हर नर खंड बर नर मंड अनुभव नास मोन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदाम छिजांगासन भंग उपमा पार गत मितोदार जल थल मंड जल थल अमंड दिस विश भंड जल थल महंत दिस विश बेंत अनुभव नास त्रित धर तुरास आजन बाहो एकस दाह ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरनाम चिज गात अज जन बात अनथन गात अनंत बात अन टुट पंडहर अनठट अपार आडीट धर्म अतीट कर्म अनबर अनंत दाता महंत हर बोल मन छंद त्वा प्रसाद करणालय है अरकालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व अबारण है त्रित के धरण है जाके कर्ण है मन माने हैं जग जाने सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास है सर्वनाश है

करना कृता है, कृता कृता धरणी त्रेता है। अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृता मृता मृता है, अदबा कृता मृता मृता है, नरनायक है, खलकायक है, बेसों पर है, करुणालय है, नरपनायक है, सर्व पायक है, पापंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्मा है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पुजह प्रयात संद है। नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग साथ रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो ज्योत ज्योति, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कला करता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे नादंग बेपूते, कलंकर रूपे, अलंकर अलंके, नमो आसासे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अरंगे, नामे त्रिपंगी त्रिकाले अरंगे, कामे एक अक्षरी छंद, अजाय अलाय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज।

अंगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्त प्रणामे समस्त प्रणासे अगंजल नामे समस्त निवासे कामंग बे पूते समस्त स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सो धर्मंग बे पूते सदा सत दाना

तीर्थ नहावै अर्चा पूजा करवा सबह कार जोगी सुन त्यावन जे त्या लख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख बिजय देने कै विचार दे दे मंगै सहसा गुना सोप करे संसार चोरा जारे ते कुड़ियारा खारा बाबे कार।

रहो। जात में जोत, जोत में जाता या कल कला भरपूर है या तू सच्चा साहिब सिर्फ सवाल जिनकी तीस।

0: ठीक है जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुखमणी साहिब गौड़ी सुखमणी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुर ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपति सिमरो सिमर सिम सुख पावो कल कलेस तन माहे मिटावो सिमरो जास संभर एक नाम जपत अगंत अनेका वेद पुराण सिमरत सुधाखर किन्ने राम नाम एक आखर किनका एक जिस जी बसावै ताकी महिमा गनी न आवै कांकी एक दर्स तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमणी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जन कै मन विश्राम रहाओ प्रभ के सिमरन गर्भ नाम बसै प्रभ के सिमरन दुख जम नसै प्रभ के सिमरन काल पर हरै प्रभ के सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ के सिमरन अनदिन जागै प्रभ के सिमरन भौ ना व्यापै प्रभ के सिमरन दुख ना संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निधान नानक हर रंग प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ के सिमरन जप तप पूजा प्रभ के सिमरन बिनसै दूजा प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ के सिमरन दरगह मानी प्रभ के सिमरन होय सो भला प्रभ के सिमरन सो फल फला से सिमरह जिन आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा प्रभ के सिमरन उदरे मूचा प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ के सिमरन सब किश सूझै प्रभ के सिमरन नाही जम दरासा प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा प्रभ के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरय से तनवंत प्रभ को सिमरय से बतवंत प्रभ को सिमरय से जन परवान प्रभ को सिमरय से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे प्रभ को सिमरे से सुखवासी प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला
1: नानक जन की मंगेर वाला
0: प्रभ को सिमरे से पर उपकारी
1: प्रभ को सिमरे तन साध बलहारी
0: प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे
1: प्रभ को सिमरे तन सुख बिहावे
0: प्रभ को सिमरे तन आत्म जीता
1: प्रभ को सिमरे तन नरमर रीता
0: प्रभ को सिमरे तन अंधक नेरे
1: प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे
0: संत कृपा ते अंदिन जाग
1: नानक सिमरन पूरे पाग
0: प्रभ के सिमरन कार्ज पूरे
1: प्रभ के सिमरन कबू न चूरे
0: प्रभ के सिमरन हर गुणबानी
1: प्रभ के सिमरन सहज समाने
0: प्रभ के सिमरन निश्चल आसन
1: प्रभ के सिमरन कमल विगाचन
0: प्रभ के सिमरन अनंत चुनकार
1: प्रभ को सिमरे
0: सुख प्रभ सिमरन का अंत
1: न पार
0: सिमरिया से जन जन को प्रभ मया
1: नानक तिन जन सरनी पया
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाई
1: हर सिमरन लग भेद पाए
0: हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते
1: हर सिमरन नीच चौं कुंट जाते
0: हर सिमरन धारी सब धरना
1: सिमर सिमर हर कारण करना
0: हर सिमरन क्यों सगल अकारा
1: हर सिमरन में आप निरंकारा
0: कर कृपा जिसे आप बजाया
1: नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया
0: श्लोक
1: दीन दर्द दुख भंजना।

0: राष्ट्रपति
1: जाप ताप ज्ञान सब ध्यान
0: काट शास्त्र से मृतव ज्ञान
1: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया
0: सागल त्याग मन मध्य फिरिया
1: अनेक प्रकार किए बहुत जतना
0: पौन दान होमे बहु रतना
1: से कटाए होमे कर राते
0: वार्त नेम करे बहु पाती
1: नहीं तुल राम नाम विचार
0: नानक गुरमुख नाम जप गे एक बार
1: नौखंड पृथ्वी फिरे चिर जीव
0: महा अदास तपीसर थी वे
1: अगण माए होमत प्राण
0: कान का सर है वर भूम दान
1: ड्योली कर्म करे बो आसन
0: जैन मार्ग संजम अत साधन
1: निमुख निमुख कर सिर कटावे
0: तोपी होमे मेल न जावे
1: हर के नाम संसार कष नाहे
0: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए
1: मन कामना तीर्थ देह छुटे
0: गर्भ गमान न मन ते उठे
1: सोच करे दिन सर रात
0: मन की मैल न तनते जात
1: इस देही को बहु साधना करे
0: मन ते कभु न भिख्या टरे
1: जल धोवे बहु देह अनीत
0: शुद्ध कहाँ होए काची पीत
1: मन हर के नाम की महिमा ऊच
0: नानक नाम उदरे पतित बहु मूच
1: बहुत स्यान पर जम का बहु व्यापे
0: अनक जतन कर त्रिसन ना त्रापे
1: पेख अनेक अगर नहीं बुझे
0: कोट अपा दरगे नहीं सीजे
1: छूठ नाही उब पयाल
0: होए व्यापे माया जाल
1: अवर करतो सगली जम डान
0: गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने
1: हर का नाम जब तो दुख जाए
0: नानक बोले सहज सबाए
1: चार पदार्थ जे को मांगे
0: साध जना की सेवा लागे
1: जे को अपना दुख मिटावे
0: हर हर नाम हृदय सत गावे
1: जे को अपनी शोभा लोरे
0: साध संग ए होमे छोरे
1: जे को जन्म मरण ते डरे
0: साध जना की शरणी परे
1: जिस जन को प्रभु दर्श पे आसा
0: नानक ताके जल बल बल जासा
1: सगल पुरख में पुरख प्रधान
0: साध संग जा का मिटे अभिमान
1: को जो जान है नीचा
0: सो गनगे सब ते ऊंचा
1: जा का मन होए सगल की रीना
0: हर हर नाम तेन कट कर चीना
1: मन अपने ते बुरह मिटाना
0: पेखे सगल सरे साजना
1: सुख दुख जन सम दिष्टेता।

0: राष्ट्रपति
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
0: जैसे जल में कमला लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष
0: जैसे सु सर्व को शोक
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज लंको लागे तिल
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
0: ज्यों सदा को उच्च उद्देश को चंदन लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी के एह गुनाह
0: नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होय प्रकाश
0: जैसे तार ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाई अभमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच से ऊंचा
0: मान अपने सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भय
0: नानक जिन पर व्याप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सकल की दीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न पाया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास
1: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह
0: ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी धंधा
1: ब्रह्म ज्ञानी के हो सो भला
0: ब्रह्म ज्ञानी सो पल पला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी ओम बुद्ध त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा नंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सह निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंता
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाइया
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे
0: के सगल मन माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाय अध्याखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी साध जीवे नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख बदाता
1: ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार।

0: संत समेत
1: कन न सुने काहू की निंदा
0: सबते जाने आपको मंदा
1: गुरु प्रसाद भिख्या पर हर है
0: मन की वासना मनते टरे
1: इंद्री जत पंच दो तेरा है
0: नानक कोट मजे को ऐसा पास
1: वैष्णु सोच से ऊपर सो प्रसन्न
0: मिशन की माया से हुए पहना
1: कर्म करत होवे नहीं कर्म
0: तिस वैष्णु का निर्मल धर्म
1: कहो फल की इच्छा नहीं बाचे
0: केवल भगत कीर्तन संग राचे
1: मंतन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ है अवर है नाम जपावे
0: नानक को वैष्णु परम गत पावे
1: को अति भगवंत भक्त का रंग
0: सगल त्यागे दुष्कर संग
1: मनते बिरसे सगला भरम
0: पर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: सा संग पापा मल खोवे
0: तिस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नितनीत
0: मंतन अर्पे बिशन प्रीत
1: हर के चन हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडा चो मन पर बुद्ध
0: राम नाम आत्म में सोदे
1: राम नाम सारस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो नावे
1: वेद प्राण सिमरत बुझे मूल
0: सुख में जाने स्थूल
1: चौबाना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा आदेश
1: बीज मंत्र सब को ज्ञान
0: जो वर्ण में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: साथ संग पावे जन कोए
1: कर कृपा अंतर और तारे
0: पास प्रेत मुक्त पात्र को तारे
1: सब रोको खद नाम
0: कल्याण हो मंगल गुण गाम
1: काहू जोत के तेन पाइये धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन प्राप ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम जिस नदरी आया
0: दास संसार पाए तन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दर के परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: ऐसे दास को सब सोजी परे
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे
0: जीवन मुक्त सोग कावे
1: तैसा हरक तैसा उसोग
0: सदा अनंत नहीं बेओग
1: तैसा सुन तैसी उस माटी
0: तैसा अमृत तैसी बेकाटी
1: तैसा मान तैसा अभिमान
0: तैसा रंग तैसा राजान
1: जो वर्ताए साई जुगत
0: नानक को पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: आप ब्रह्म के सगले ठाओ
0: जित जित कर राखे तैसा तिन नाओ
1: आपे कन करावन जोग
0: प्रपावे सोई परोग
1: तसरु आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मादे तैसा परगास
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा जैसी मादे तैसा

0: नानक गर्भ गलेय अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान
1: सो नरक पापी हो स्वान
0: जो जाने मैं जो बलवंत
1: सो अवत विशा का जंत
0: आपस को कर्मवंत कहावे
1: जन मरे भोजन प्रमाहे
0: तन भूम का जो करे गुमान
1: सो मूर्ख अंधा ज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
1: नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे
0: तनवंता होए कर गर्भावे
1: ऋण समान को संग न जावे
0: बोलस कर मालुक ऊपर करे आस
1: पल पीतर
0: सब ते आप जाने बलवंत
1: में होए जाए पसमंत
0: किसे न बदाय आप अहंकारी गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान
1: सो जन नानक दरगे परवान
0: कोट क्रम करे हो तारे
1: जन पावे सगरे विस्तारे
0: अनेक तपस्या करे अहंकार
1: नरक स्वर्ग फिर अवतार
0: अनेक जपन कर आत्म नहीं द्रवे
1: के को कैसे गवे
0: आपस को जो भला कहावे
1: जिसे भलाई निकट न आवे
0: सर्व की रेर जाका मन होए
1: कौन नानक ताकी निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझते कछ होए
1: तब इसको सुख नाही कोए
0: जब ए जाने मैं किछ करता
1: तब लग गर्भ जून में फिरता
0: जब तारे को बैरी मीत
1: तब लग नेचर नाही चीत
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग धर्म राय देश जाए
0: प्रभु कृपा ते बंधन चित टूटे
1: गौर प्रसाद नानको छूटे
0: सहस कटे लख को
1: उठतावेतना आवे माया पाछे पावे
0: अनग भोग बिखिया के करे
1: नहीं तपतावे कब कम मरे
0: बिना संतोख नहीं कौ राजे
1: स्वप्न मनोरथ बिरथे सब काजे
0: नाम रंग सुख सर्व सुख होए
1: बड़ भागी किसे प्राप्त होए
0: करुण करावण आपे आप
1: सदा सदा मान कर जाप
0: करुण करावण करने हार
1: इसके हाथ का विचार
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आप प्रभु सोए
0: जो कुछ कीनो सो अपने रंग
1: साबते दूर सबो कै संग
0: बुझे देख देखे करे विवेक
1: आपे एक आपे अनेक
0: मरे न बिनसै आवे न जाए
1: नानक सदी रहया समाए
0: आप उपदेशे समझे आप
1: आपे रचया सबके साथ
0: आप कीनो अपन विस्तार
1: सब कुछ उसका हो करने हार
0: उसते पिन कहो किच होए
1: तान तन अंतर एक सोए
0: अपने चलत आप करने हार
1: कौतुक करे रंग अपार
0: मन में आप अबन अपने माहे
1: नानक कीमत कौन न जाए
0: सत सत सत प्रभु स्वामी
1: और प्रसाद के ने बख्यानी
0: सच सच सच सब की ना
1: कोट मदे के ने मिले चीना
0: पला पला पला तेरा रूप
1: आत सुंदर अपार अनूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
1: कट कट सुनी स्वर्ण बख्यानी
0: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
2: नाम जपे
1: नानक मन प्रीत श्लोक
0: संत शरण जो

0: गर्भ जिया पितपाल
1: सगल की चिंता जिस मन माहे
0: तस्ते व्यर्था कोई नाहे
1: प्रेमन मेरे सदा हर जाप
0: अवनासी प्रभ आपे आप
1: आपन किया कछु ना होए
0: जैसो प्राणी लोचे कोए
1: तिस बिन नाही तरह किछ काम
0: गत नानक जपे कर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह
0: प्रभ की जोत सगल कट सोए
1: धनवंत होए क्या को गर्भ है
0: यहाँ सब को तिसका दिया दर्भे
1: अत सूरा जे को कहावे
0: प्रभ की कला बिना कहता वे
1: जे को हुए बह दाता
0: तिस देन हार जाने गवार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग
0: नानक सोजन सदा रोग
1: जो मंदर को थमे मथम मन
0: त्यो गुर का शब्द मन स्तमन
1: जो पाखान नाव चढ़तर
0: प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे
1: जो अंधकार दीपक प्रगास
0: गुर दर्शन देख मन होए बगास
1: जो महा उद्यान में मार्ग पावे
0: त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे
1: तिन संतन की बाछो तूर
0: नानक की यार लोचा पूर
1: मन मूरख काहे बिरलाई है
0: और लिखे का लिखिया पाइये
1: दुख सुख प्रभ देव ने हार
2: अवर त्याग तू तिसे ही सितार
1: जो कुछ करे सोई सुखमान
0: पूला काहे बिरे अजान
1: कौन बस आई तेरे संग
0: लाट रे और असलोभी पतंग
1: राम नाम जप हृदय माहे
0: नानक पासे ती कर जाए
1: जिस वक्कर को लैण तो आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: तज अभिमान ले हो मन मोहन
0: राम नाम हृदय में तोल
1: नाद खेप संत संग चाल
0: अवर त्याग क्या जंजाल
1: धन धन कहे सब कोए
0: मोक उजला दर के सोए
1: यो वापार बिरला वापार है
0: नानक ताके सद बलहारे
1: चरण साध के तोए तोए पियो
0: अर्प साध को अपना जियो
1: साध की तुर करो स्नान
0: साध ऊपर जाइए कुर्बान
1: साध सेवा बड़ भागी पाई है
0: साध संग हर कीर्तन गाइए
1: अनक बिघन ते साधु रख
0: अगर गाय अमृत रस चाके
1: ओट गई संत धरे आया
0: सर्व दुख नानक ते पाया
1: मृतक को जीवालन हार
0: भूखे को देवता दार
1: सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे
0: और लिखे का लेना पाए
1: सब की तिसका ओ करना जोग
0: दस मन दूसरो आना होग
1: जप जन सदा सदा दिन रहनी
0: सब ते उच निर्मले करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल थिया
1: जाके मन गुर की प्रतीत
0: तेजन आवे हर प्रचीत
1: भगत भगत सुनिए ते लोए
0: जाके हृदय को
1: सच करनी सचता की रहत
0: सच हृदय सत मुकैत
1: साची दृष्ट साचा आकार
0: सच बाते साचा पासार
1: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता
0: नानक सोजन सच

0: अष्टपदी अविनाशी ब्रह्म में राख
1: मान की तू प्रीत्याग
0: तिस्ते परे नहीं किछ कोए
1: सर्व निरंतर एको सोए
0: आपे बिना आपे दाना
1: गाय रघुबीर रघुबीर सुजाना
0: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
1: कृपा निदान दयाल बख्शंद
0: सात रे की चरनी पाओ
1: नानक के मन हर राव
0: मनसा पूर्ण सरना जोग
1: जो कर पाया सोई होग
0: हरन भरन जाका नेत्र फोर
1: इसका मंत्र जाने और
0: आनंद रूप मंगल सद जाकर
1: सर्व तोप सुनिए करता के
0: राज में राज जोग में जोगी
1: तप में तपिशर ग्रस्त में भोगी
0: त्यहे तहे भगत सुख पाया
1: नानक तिस पुरखा के अंत न पाया
0: जाकी लीला की मितना है
1: सगल देव हारे अब गाए
0: पिता का जन्म के जाने पूत
1: सगल प्रोही अपने सूत
0: समत ज्ञान ध्यान जिंदे
1: जिन दास नाम त्यावे से
0: ते गुण में जाको परमाए
1: जन्म मरे फिर आवे जाए
0: ऊंच नीच तिस के स्थान
1: जैसा जनावे तैसा नानक जान
0: नाना रूप नाना जाके रंग
1: नाना पे करे एक रंग
0: नाना भित कीनो विस्तार
1: प्रभु बनासी एक ओंकार
0: नाना चलत करे किन माहे
1: पूर्ण देव पूर्ण सब ठाए
0: नाना विद कर बनत बनाई
1: अपनी कीमत आपे पाई
0: सब कट तिस के सब तिस के ठाव
1: जब जब जीवे नानक हर नाम
0: नाम के तारे सगले जंत
1: नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
0: नाम के तारे सिमृत वेद पुराण
1: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आगास पाताल
1: नाम के तारे सगल आकार
0: नाम के तारे पुरिया सब भवन
1: नाम के संग उदरे संसरवन
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सो जन गत पाए
0: रूप सत जाका सत स्थान
1: पुरख सत केवल प्रधान
0: करतूत सत सत जाकी बाणी
1: सत पुरख समय
0: सत कर्म जाकी रचना सत
1: मूल सत सत उत्पत
0: सत करणी निर्मल निर्मली
1: तिसे बिजाय तिसे सब पली
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई
1: विश्वास सत नानक गुरते पाई
0: सत बचन साधु उपदेश
1: सत जन जाके हृदय प्रवेश
0: सत निरत बुझे जे कोए
1: नाम जपता की गत होए
0: आप सत किया सब सत
1: आपे जाने अपनी मित गत
0: जिसकी दृष्ट जिसकी सृष्ट करने हार
1: अपना बुझ करत विचार
0: करते की मित न जाने किया
1: नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया
0: बिस्मन बिस्म पए बिस्माद
1: जन बुझिया ते साया स्वाद
0: प्रभ के रंग राच जन रहे
1: और के बचन पदार्थ लए
0: उड़े दाते दुख काटन हार
1: जाके संग तरे संसार
0: जन का सेवक सो बड़ भागी
1: जन के संग एक लिव लागी
0: गुण गोविंद कीर्तन
1: जन गावे
0: गुरु प्रसाद नानक पल पल

0: अष्टपदी चरण सत सत पर सनहार
1: पूजा सत सत सेवदार
0: दर्शन सत सत पेखनहार
1: नाम सत सत अवनार
0: आप सत सत सब धारी
1: आपे गुण कारी
0: शब्द सत सत प्रवक्ता
1: सुरत सत सत जस सुनता
0: भोजन हार को सत सब होए
1: नानक सत सत प्रभ सोए
0: सत स्वरूप हृदय जिन मान्या
1: तन करावन तन मूल पहचान्या
0: जाके हृदय विश्वास प्रभ आया
1: तत ज्ञान तिस मही प्रगटाया
0: निरपो होए बसाना
1: जैसे उपजे तिस माहे समाना
0: बस्त माहे ले बस्त गड़ाई
1: ताको भिन्न न कहना जाई
0: बूझे बूझन हार विवेक
1: नारायण ने नानक एक
0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
1: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
0: ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत
1: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
0: ठाकुर को सेवक जाने संग
1: प्रभु का सेवक नाम कह रंग
0: सेवक को प्रपालन हारा
1: सेवक की राखे निरंकार
0: सो सेवक जिस दया प्रभ धारे
1: नानक सो सेवक सास सास समारे
0: अपने जन का परदा ढाके
1: अपने सेवक को सर पर राखे
0: अपने दास को दे बढ़ाई
1: अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक की आप पत रखे
1: ताकि गत मित कोई न लाके
0: प्रभ के सेवक को कौन न पहुँचे
1: प्रभ के सेवक ऊंचते ऊंचे
0: जो प्रभ अपनी सेवा लाया
1: नानक सो सेवक दिस प्रगटाया
0: नेकी कीरी में कल रखे
1: करे लश्कर कोट लाके
0: जिसका सास न काटते आप
1: ताको रात दे करात
0: मानस जतन करत बोपात
1: तिसके करत बिरते जात
0: मारे न रखे अवर न कोए
1: सर्व जिया का राखा सोए
0: काहे सोच करे रे प्राणी
1: जप नानक प्रभ कबड़ानी
0: बारंबार बार प्रभ जपिया
1: पी अमृते मन तन तृपगे
0: नाम रतन जिन गुरमुख पाया
1: तिसको सरन नय दिसाया
0: नाम तन नाम रूप रंग
1: नामो सुकर नाम का संग
0: नाम रस जो जन तृप्ता ने
1: मंतन नामे नाम समाने
0: उठत बैठत सोवत नाम
1: कहो नानक जन के सदकाम
0: बोलो जब जस जेबा दिन रात
1: प्रभ अपने जन की नींदात
0: करे भगत आत्म कह चाहे
1: प्रभ अपने सो रहा समाए
0: जो हो वसो जान
1: प्रभ अपने का हुक्म पहचान।